0: 104 FM Stereo.
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
2: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
1: कपड़ा

जी बहुत ही खूबसूरत कलाम और मैसेज आया मेरी प्यारी दोस्त शायदा की तरफ से जो कहती है जस्ट हैड टू से वेटेड पेशेंटली फॉर द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द वीक एंड यू डिलीवर्ड ट्रैक्स आर अमेजिंग माशाल्लाह जजाकल्लाह फॉर ऑलवेज पुटिंग सो मच हार्ट इन टू इट बेशक शायदा पा मैं तहे दिल से ये प्रोग्राम करती हूँ और यकीन माने एवरी संडे आई वेट फॉर दिस टाइम बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ दुआज फ्रॉम माई लिसनर्स और यही नहीं हम लोगों के दुआ के तलबगार हैं क्योंकि दुआओं में जो ताकत है वो कहीं नहीं और इसके बाद रशीद आपा भी प्रोग्राम पसंद कर रही हैं और अली बांदेकर साहब भी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का आपके हौसला अफजाई का अगला कलाम है शहादत हुसैन की

0: जी प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। और मैसेज आया है, बर्थडे मैसेज है हमारी प्यारी वहीदा अपा की तरफ से, जो कहती है आज 5 जुलाई को मेरी एक लौती बेटी राबिया पाकर की 30वीं सालगिरह है। मैंने मेरी बेटी को बचपन से लेकर जवानी तक देखा, जिस पर मुझे आज फख्र है। मैं दुआ करती हूँ कि आज उसकी सालगिरह के दिन और हर रोज उसे दोनों जहाँ की खुशियाँ मिले और अल्लाह उसे सेहतमंद और उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। अल्लाह मेरी बेटी को हमारी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। और ये पैगाम सिर्फ तुम्हारी माँ वहीदा शमशुद्दीन की साथ वहीदा शमशुद्दीन की तरफ से है। और एक बर्थडे मैसेज है, बहुत ही ख़ास बर्थडे मैसेज, हमारी खूबसूरत खुर्शीद अब्बास जिनकी सालगिरह थी 4 जुलाई, और रशीदा अब्बास जिनकी सालगिरह आज है 5 जुलाई को। मे अल्लाह ग्रांट देम हैप्पीनेस, खैर बरका, लॉन्ग लाइफ। एंड दिस कम्स फ्रॉम दलवी अब्बास एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। और मोहम्मद रसा साहब जो चाइना से हमें ट्यून इन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी वहाँ पे तकरीबन 2:45 बजे हैं चाइना में। सो कह रहे हैं कि मेक दुआ फॉर माई अंकल हु इज़ इन लेंस मेडिकल क्लिनिक हसन उजमन, पॉपुलरली नोन एज मामू इन क्रॉसबी जोबर्ग। हम यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके अंकल को शिफाए कामिल अता फरमाए और उनके हक में जो बेहतर है वो करें। काफ़ी लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमाए, उनकी परेशानी को दूर कर, उनकी तकलीफ को दूर कर, आमीन। अगला कलाम है इधर जिंदगी का जनाजा उठे।
1: जिस्मों पे बिकने वाले

जी इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। और अगला कलाम है मालिक तेरी दुनिया में।